0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल वॉइस ऑफ नॉर्वे। इस नात के साथ ही रेडियो इश्क की उर्दू नशरियात का वक्त खत्म हो जाएगा। ये प्रोग्राम अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी थर्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सुना और इस प्रोग्राम को आप तक पेश करने में मेरा साथ दिया है तनवीर दुर्रानी, मिसेज ए खान और मिस गिरी ने। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।